मीडियम वेव 180.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन EIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र

0: की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

महर्षि वेदव्यास ने कहा, अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में विद्यमान हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत को प्राप्त करता है। जब कोई प्रेम के द्वारा ईश्वर की शक्ति को समझता है और जानता है कि वो उसके ही भीतर है, तो उसके अंदर अपार शक्ति, करुणा और सहनशीलता का संचार होता है।

जीवन में जब कोई बाधा आती है तो भगवान के साथ अपने गहरे संबंध होने की अडिग अनुभूति से वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ संभलने में सक्षम हो पाता है। इसलिए ईश्वर से तादात्म्य बनाए रखिए, ईश्वर से साक्षात्कार करते रहिए, प्रकृति के कण कण में ईश्वर की अनुभूति करते रहिए।

प्रत्येक कण में ईश्वर की अनुभूति करना ईश्वर की आराधना के समान है। ईश्वर प्रेम है और हम सभी प्रेम से बंधे हैं। हमारी आत्मा उसी तत्व से बनी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आइए उस ईश्वर की आराधना करें, वंदना करें, विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।

अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करके मन मंदिर में ज्ञान के दीप जलाना भगवान की सच्ची पूजा है। इच्छाओं पर विजय पाने वाले और कर्तव्य से विचलित नहीं होने वाले व्यक्ति का कद पहाड़ से भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए इच्छाओं पर विजय पाइए और ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हुए कर्तव्य निष्ठा से अपना कर्म करते चले जाइए।

0: वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्ति पूर्ण रचना के पश्चात अंबर कुमार, छाया गांगुली, पंडित उमाकांत, पंडित रमाकांत गुंदेचा और अनुराधा पौडवाल के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। स्वर है अनूप जलोटा का, संगीत सतीश भाटिया का।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड, इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सूरठे तथा दोहे

चूहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि, वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था अनूप जलोटका, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है योग, आलेख डॉक्टर साकेत अग्निहोत्री का है।
1: योग, इस शब्द का निर्माण युज धातु से हुआ है। युज का अर्थ है जोड़ना या जोड़ने वाला। इसी युज से युग्म, योगी और युगल जैसे शब्दों की निर्मिति भी हुई है। हम योग का अर्थ ऐसी क्रियाओं से लेते हैं जिसमें शारीरिक व्यायाम और विभिन्न आसनों का समुच्चय है, परंतु सैद्धांतिक रूप से ये अर्थ अधूरा है। विशद रूप में योग का अर्थ जीव का ईश्वर से जुड़ना है और आसन तथा व्यायाम सहायक क्रियाएं हैं। गीता पूरी तरह योग पर केंद्रित है, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम योगीराज भी है। योग शीर्षक से तो एक संपूर्ण दर्शन शास्त्र है, सांख्य के साथ योग भी संलग्न है। आज विश्व में योग को मुख्यतः शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सशक्त साधन के रूप में देखा जाने लगा है। इस प्रकार का योग भारत के अलावा चीन और दुनिया के दूसरे देशों में ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक रूप से प्रचलित है। अन्य देशों में भी सूक्ष्म और विशद यौगिक क्रियाओं को सैकड़ों साल से किया जाता रहा है। भारतीय योग जिस प्रकार प्राण या श्वास को मुख्य केंद्र में रखता है, वैसे ही चीन का योग ची को जीवन शक्ति का केंद्र मानता है। वे इस ची को सशक्त करने के लिए कठिन व्यायाम की एक लंबी श्रृंखला को अपनाते हैं। योग का ही एक रूप हठ योग भी है। हठ योग के साधक तरह तरह के कठोर तप करते हैं। हमें योग को बहुत पारंपरिक रूप में ग्रहण करने के बजाय उसे तन और मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने वाली प्रक्रिया के रूप में अपनाना है। ऐसी प्रक्रिया जिसे अपनाकर हम आज की तनाव भरी जिंदगी में चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकें। योग मानसिक एकाग्रता और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने की सरल पद्धति है। दैनिक भोजन और कार्यस्थल की परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बनाए रखने का उपाय है। छोटे छोटे सरल व्यायाम जिन्हें थोड़े से अभ्यास से अपनाया जा सकता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय और प्रभावशाली बनाए रखते हैं। बीमारियां जल्दी हमला नहीं करती और बदलते मौसम का आनंद भी हाथ से नहीं जाता। आपके सूर्योदय और सूर्यास्त आपके उत्साह का कारण बने रहते हैं। यौगिक व्यायाम शरीर के अंदर और बाहर के अंगों की ताकत और स्फूर्ति बनाए रखते हैं। जब शरीर के आंतरिक अंग सुदृढ़ रहते हैं, तभी तो बाहर की दुनिया सुहाती है। एक बार विनोबा भावे से किसी पत्रकार ने पूछा, आप देशस्थ हैं या कुंकड़स्थ? विनोबा ने हंसकर कहा, मैं केवल स्वस्थ हूं। विनोबा ने सच ही कहा, क्योंकि स्वस्थ का अर्थ है जो स्वयं में स्थित है। व्यक्ति स्वयं में तब स्थित होता है जब तन के साथ उसका मन भी अच्छा रहे। इसीलिए कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इस कार्यक्रम में विषय था योग। आलेख था डॉक्टर साकेत अग्निहोत्री का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में विषय है खरीफ फसलों की बुआई। वार्ताकार हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज की कृषि चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की बुआई। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि खरीफ फसलों की बुआई रबी से अधिक महत्वपूर्ण है समय के मामले में। यानी अगर समय से हम बो दें तो उसका उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। इसीलिए ये कहावत भी है कि अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये है। हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अभी मौसम अनुकूल है और बारिश शुरू होने के बाद करीब 8-9 सेंटीमीटर बारिश हो जाने के बाद जब हम खरीफ फसलों की बोनी करें तो पहला हमारा कदम है कि हम अच्छी जातियों का चुनाव करें जिससे अधिक उत्पादन वाली जातियां हम ले पाएँ और रोग रोधी और जिनमें कीट भी कम आते हों ऐसी जातियों का हम चुनाव करें। और इसके साथ ही अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बीजोपचार सभी फसलों में करना है जिससे हम आने वाले समय में बीमारियों से अपनी फसलों को बचा सकें। और ना केवल बीमारियों से बल्कि कुछ कीट भी ऐसे हैं जो बीजोपचार करने पर शुरुआती अवस्था में नियंत्रित होते हैं, तो वो कीटनाशक से भी हमें बीजोपचार करना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी महत्वपूर्ण है कि बोने का समय कौन सा है। अभी शुरुआत हो गई है खरीफ फसलों की बुआई की, 15 जून हो गया है। इसके बाद मौसम भी अनुकूल है। अभी से लेकर प्रथम सप्ताह तक हम बुआई कर सकते हैं। खासतौर से सोयाबीन जो हमारी मुख्य फसल है खरीफ की, इसकी बुआई हम प्रथम जून प्रथम सप्ताह जुलाई तक कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें ध्यान में रखना है किसान भाइयों, वो ये है कि कितनी दूरी पर हम फसलें बोएं कतारों की दूरी कितनी हो पौधे से।

0: पौधे की दूरी कितनी हो और इसके साथ में ही बीज की मात्रा कितनी हो, क्योंकि ये नींव हैं अच्छे फसल उत्पादन के। इनमें अगर हमने अभी सावधानी रख ली तो आगे हमारी फसल बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली बनेगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन में हमें 40 सेंटीमीटर की कतार से कतार दूरी रखनी है, और इसके अलावा अगर हम ज्वार मक्का बो रहे हैं तो उनमें हमें 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है जातियों के फैलाव के अनुसार। तो इस हिसाब से अगर हम जब उनकी व्यवस्था करेंगे तो उनमें बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और फिर अगली बात आती है कि हम उनको उर्वरक या खाद कितना दें। शुरुआत में ही हमें उसको भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो ये ध्यान रखें कि जो भी उसकी खुराक है, जो मात्रा है, वो हम पूरी रासायनिक उर्वरकों से ना दें, उसमें जैविक खादों का भी समावेश करें। वो आपके पास जितनी उपलब्ध है उसके अनुसार 20%, 30%, 40%, 50%, या आपके पास भरपूर जैविक खाद उपलब्ध है तो आप जैविक खेती भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अनुशंसित मात्रा उर्वरकों की खाद की उपयोग करें, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि ये मिट्टी परीक्षण के आधार पर तय होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का परीक्षण हुआ है और उसमें किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है तो उस पोषक तत्व को हमें अनावश्यक रूप से डालने की आवश्यकता नहीं है, जिससे खर्च भी हमारा बढ़ता है। लेकिन जिस पोषक तत्व की कमी है वो छूट ना जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमें पोषक तत्व का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बीजोपचार में आमतौर पर आप देखें कि सोयाबीन और इसके साथ की जो फसलें हैं उनमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थायरम 2 ग्राम, तो कुल 3 ग्राम फफूंदनाशक प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्बोक्सिन ये भी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। फिर ट्राइकोडर्मा भी हम उपयोग करें, ये भी करीब 3 ग्राम से 5 ग्राम प्रति किलो बीज इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अगर हम ज्वार और मक्का जैसी फसलें बो रहे हैं तो उनमें हम जरूर ये डालें, लेकिन उसमें कल्चर होगा एजेटोबैक्टर, इसका उपयोग करें तो इससे भी हमें नत्रजन की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही सभी फसलों में, चाहे वो ज्वार मक्का हो, सोयाबीन हो या उड़द मूंग हो, सभी में PSB ये कल्चर अवश्य उपयोग करना है। ये भी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार के समय इसको मिलाएं तो ये हमें फास्फोरस की उपलब्धता फसलों को बढ़ाता है। और यही PSB कल्चर अगर हम इसको लगभग 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर जमीन में दें तो जमीन में जो स्थिर फास्फोरस है, जो उपलब्ध नहीं हो पाया है पौधों को पिछली बार जो आपने दिया था, वो उसको घुलनशील अवस्था में लाता है और उसके बाद पौधों को उपलब्ध बनाता है, तो इसको भी अवश्य हम खेत में मिलाएं। साथ में अगर जिंक की कमी है तो 25 किलो जिंक सल्फेट हम मिला सकते हैं। तो ये थी आज की कृषि चर्चा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, इसमें विषय था खरीफ फसलों की बुआई। वार्ताकार थे डॉक्टर हरदयाल वर्मा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सुखिनः सर्वे संतु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत

0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। पर सुना जा सकता है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुनिएगा लोक संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे अनीता यादव के गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुना जा सकता है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। 10:00 आपको सुनवाएंगे सुबह 10:00। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ सुनेगा 10:05 पर। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज सुबह

ग्यारह बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 11:40 पर आप सुन सकते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। बारह बजकर 30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भुवन मोहिनी का तीसरा भाग। 1 महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है। 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेंगे। दो बजकर 30 पर आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर। 6:30 पर आप सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत। 6:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 6:30 पर आप सुन सकते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 का आंखों देखा हाल। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय होगा वन्य जीव। 8:35 से आप पुनः सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला T20 का आंखों देखा हाल। 8:35 हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।

0: जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर तीन स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, वहीं INS संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और INS अग्रह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
2: सेना की विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
1: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट UG पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
3: आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट के एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रुपये की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि PM किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।

0: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश ये है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए जनता को भटकना ना पड़े इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात पहाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
1: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रुपये की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1100 रुपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है और उनका लक्ष्य सुरखी के हर गाँव को सुविधायुक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम रामाकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केंद्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट UG की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं तीन देवियां फिल्म का नगमा, जिसकी आवाज दी है किशोर कुमार और साथियों ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, तो आइए सुनते हैं ये नगमा।
2: मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

चमन सालवर आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निरीक्षण और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल कैलानी और कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी के जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से यह प्रसारण आप तक

जयपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक

وراثت کا امول اپہار ہے۔ یہ کیول شاریرک ویایام نہیں بلکہ بارہویں انتراشٹریہ یوگ دیوس کے ایتہاسک اور گرما میں سماروہ میں میں چمن سالوار آکاشوانی جبلپور ٹوک سے آپ سبھی کا سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں۔ اپ مہا نردیشک شری ولی اللہ خان کے کشل نردیشن اور کاریہکرم پرمکھ شری شیام لال ٹہلانی اور کاریہکرم اچاری شری بیپن یادو کے مارگ درشن میں آکاشوانی کی جس کریٹو ٹیم کے مادھیم سے یہ پرسارن آپ تک پہنچ رہا ہے۔ वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री भूपराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुशासी श्री नीला बाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं, पलक पावड़े बिछाए समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मरकज है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता, संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से विकसित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है रेवा के हर शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है, वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है, और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है, और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है, और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर

हेल्थी एजिंग हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान विवेक विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में ये आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्या था आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम, नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुग्भाग भवेत। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यहीं योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमारे इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को
पुनः

0: इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है, 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रतापूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है, ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज़ आंधी तूफान में जो मज़बूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, ओमकार के लिए श्वास भरिए।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक 0 का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। भुजाओं को वापस

लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्रासन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन

पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है, वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं, उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए। ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो, वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है।
पुनः श्वास छोड़ते हुए

वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए, हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35-45 डिग्री उठाइए, पैर के पंजों को खींच के रखिए, यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए, यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए, अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए, गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए, आँखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए, उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए।

बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे ज़रूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

0: दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
2: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों,

भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का

0: हमारे ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य, साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: बारहवीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जब अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति

संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं, वो योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ, आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजन, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुरमई सवेरा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जिस तरह से योग हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है, उसी तरह से श्रोताओं, संगीत भी हमारे मन और मस्तिष्क को नई ऊर्जा और प्रसन्नता से भर देता है। श्रोताओं, आज विश्व संगीत दिवस भी है। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसे जो है वो डीले म्यूज़िक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संगीत उत्सव। तो क्यों ना हम भी इस उत्सव को मना

0: पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस जो है वो संगीत के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को सुरों के माध्यम से जोड़ने के लिए समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 1982 में हुई थी और इसे मनाने का उद्देश्य ये है कि गीत संगीत को जो है वो हर क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना है, हर संस्कृति के जो गीत संगीत हैं वो लोग सुने और झूमें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। श्रोताओं, संगीत जो है वो इंसान के जीवन का एक, कह सकते हैं हम कि बहुत ही ज़रूरी या महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत से इंसान मन की शांति के साथ साथ खुशी का भी अनुभव करता है, इसीलिए संगीत का उत्सव मनाने के लिए पूरी दुनिया में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है।

वाकई श्रोताओ, गीत संगीत सुनने से हमारा मन जो है वो कितना भी उदास क्यों ना हो, एक नई ताजगी से भर जाता है और फिर से कुछ करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित हो जाता है। कह सकते हैं कि संगीत एक सार्वभौमिक भाषा है, ये हर किसी के समझ में आती है, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, समझने वाला हो। अगर वो किसी भी भाषा का गीत संगीत सुने तो उसके दिल को सुकून ज़रूर मिलता है। तो हम भी कह सकते हैं कि जो विश्व संगीत दिवस आज मनाया जा रहा है, उसके मनाए जाने के पीछे यही उद्देश्य है कि सभी को संगीत के प्रति, गीत के प्रति जागरूक किया जाए और मन को प्रसन्न रखा जाए। तो अभी हम इस कार्यक्रम से छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज नीट यूजी पुनः परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दोपहर में 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है। केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां प्रदान की। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। और श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं विश्व संगीत दिवस पर। श्रोताओ, संगीत एक ऐसी विधा है जिसे सुनकर जो है वो मन प्रसन्न हो जाता है। संगीत में कई तरह के संगीत शामिल हैं। इसमें जो है वो कव्वालियाँ भी शामिल हैं, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने भी शामिल हैं और लोक संगीत पर आधारित गाने भी बहुत से हमारी हिंदी फिल्मों में हैं। तो क्यों ना हम एक प्यारी सी कव्वाली जो है वो आपको सुनवा दें।

तो गीत संगीत के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगीत में अंताक्षरी की, जो सभी लोगों को बेहद पसंद आती है और सभी लोग बहुत इसे पसंद करते हैं। हिंदी फिल्मों में भी इसे ख़ास जगह दी जाती है। कह सकते हैं कि गीत संगीत में अंताक्षरी का अपना एक अलग मुकाम है, तो क्यों ना ही ऐसा ही एक अंताक्षरी वाला फिल्मी गीत सुन लिया जाए।

तो ये था श्रोताओं प्रेम के लिए फिल्म से अंताक्षरी का मस्ती भरा गीत। अब इस कार्यक्रम यानी सुरमई सवेरा से इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो इजाजत दे हमें फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा से। नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अमिता यादव के बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अमिता यादव, इनसे आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज की कलाकार थी अमिता यादव। इनसे आज आपने सुने बुंदेली लोकगीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हांजी दोस्त तव्हांजी होस्ट जानवी भावना ने तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़े विषय ते ॻाल्हाइण लाइ गॾु थिया आहियूं जंहिंजो तालुक़ु इंसान जी सिहत, सुकून ऐं खु़शहालीअ सां आहे। योग योग भारत जी प्राचीन विरासत आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया अपनाए रही आहे। योग जो मतिलबु आहे शरीर, मन ऐं आत्मा जो मिलणु। ही सिर्फ़ हिकु कसरत कोन्हे पर हिकु मुकमल ज़िंदगीअ जी राह आहे। रोज़ाना योग करण सां शरीर मजबूत थींदो आहे, मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं माण्हूअ जो आत्मविश्वास बि वधंदो आहे। अॼु जी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगीअ में तनाव, फ़िक्र ऐं घणियूं बीमारियूं वधियूं रहियूं आहिनि। अहिड़े वक़्त में योग असांखे संतुलित ऐं स्वस्थ ज़िंदगीअ जी राह ॾेखारींदो आहे। योग सां न सिर्फ़ु शरीर फिट रहंदो आहे पर मन में सकारात्मक सोच पैदा थींदी आहे। 21 जून ते सॼी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हीअ असां भारतवासियुनि लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त योग जे महत्व खे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते मान्यता मिली आहे। हीअ भारत लाइ घणे गर्व जी ॻाल्हि आहे छो जो असांजी पुराणी परंपरा अॼु विश्व जे हर कोने में सम्मान हासिल करे रही आहे। दोस्तों, योग सिर्फ़ु शरीर खे स्वस्थ रखण जी विधि कोन्हे पर हिकु अहिड़ी जीवन शैली आहे जेकी इंसान खे मानसिक, शारीरिक ऐं आध्यात्मिक रूप सां मजबूत बणाईंदी आहे। योग शब्द जो मतिलबु आहे जोड़ण, यानी शरीर, मन ऐं आत्मा खे हिकु सूत्र में ॿधणु। असांखे इहो संकल्प करणु घुर्जे त असां रोज़ाना कुझु समय कढी योग ज़रूरु कंदासीं। जॾहिं हर माण्हू स्वस्थ रहंदो त परिवार स्वस्थ रहंदो ऐं परिवार स्वस्थ त समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ रहंदो त देश मजबूत ऐं प्रगतिशील थींदो। योग सिर्फ़ु हिकु व्यायाम कोन्हे पर स्वस्थ ऐं सुखी जीवन जी कुंजी आहे। अचो त योग अपनायूं, निरोगी जीवन पायूं। दोस्तों, योग जे बारे में वधीक जानकारी ॾियण लाइ असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद आहिनि डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, जेके योग जे बारे में छा फ़ाइदा आहिनि ऐं कीअं योग करणु घुर्जे उन जे बारे में असांखे वधीक जानकारी ॾींदा। त डॉक्टर साहिबु, मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि त योग आहे छा आख़िर?
1: योग आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि आहे। इन जे लाइ युजते अनेन इति योग आहे। जेॾी महिल आत्मा जो परमात्मा सां गॾु मिलन थींदो आहे, उहो यूनाइट जेको कंदो आहे, जेको कनेक्ट कंदो आहे, उहो योग आहे। तीअं ई असां योगा कर्मासु कौशलम, भगवत गीता में कर्मयोग जे अंदरि योग जी परिभाषा जेकी आहे उहा ॾिनल आहे, योगा कर्मासु कौशलम। असां कहिड़ो बि कमु था कयूं उहो स्किलफुल हुजे, उन में परफेक्शन हुजे ऐं पंहिंजो इनर पीस जे लाइ बि असां योग कंदा आहियूं। त योगा फिज़िकल लेवल ते, मेंटल लेवल ते, इमोशनल लेवल ते, हर लेवल ते असांखे बेनिफिट ॾेई रही आहे। ऐं सभिनीनि खां वधीक त मन शांति रहंदो आहे, असां तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं,

0: अच्छा फिट रहना आहियो, इन जे लाइ योग जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे।
1: असां अॼुकल्ह ॾिसूं पिया त कीअं भागदौड़ वारी ज़िंदगी लॻी पई आहे। ॿार त अॼुकल्ह उन्हनि खे टाइम ई कान्हे, फुर्सत ई कान मिलंदी आहे। अॼु जे आधुनिक जीवन में हिन योग जो छा महत्व आहे?
0: जीअं तव्हां चयो भागदौड़ जी ज़िंदगी, असां ॾिसूं पिया था असांजो फिज़िकल एक्टिविटी ख़तमु पियो थो थींदो वञे, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ, तनाव सां असां रहंदा पिया था वञूं। ॿार ॾिसूं त मोबाइल में सॼो ॾींहुं आहिनि ऐं वधीक टाइम असां स्क्रीन ते था बितायूं,
1: सभिनी खां वॾी परेशानी,
0: ॾाढी वॾी। ऐं उनजे करे थिए छा थो की असांजो फिज़िकल मूवमेंट थी कान थो सघे, मानसिक विकास जेको थियणो आहे उहो थी कान थो सघे, केवल असां हिकु लिमिटेड सोच में रहिजी विया आहियूं, जंहिंजे करे असांखे शारीरिक प्रॉब्लम्स भी थियनि थियूं, मानसिक प्रॉब्लम्स भी थियनि थियूं। त सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जेॾी महिल असां कोई एक्टिविटी नथा कयूं, असांजी अस्वस्थ दिनचर्या आहे, उनजे करे जेके परेशानियूं थींदियूं आहिनि उहे बीमारियुनि में उत्पन्न थींदियूं आहिनि, ऐं पोइ मानसिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि, शारीरिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि। ऐं उन्हनि में सभिनीनि खां इम्पॉर्टेंट आहे की योगा जेको आहे उहो हिकु फिज़िकल एक्टिविटी त आहे ई, पर हिकु मेंटल बूस्टर जी तरह कमु कंदो आहे, माइंड खे रिलैक्स करे एनर्जाइज़ कंदो आहे। असां जेॾी महिल प्राणायाम, ध्यानु, आसन जी प्रक्रिया कंदा आहियूं त ओवरऑल बॉडी में रीवाइटलाइज़ेशन थींदो आहे, असांजो वाइटल फोर्स वधंदो आहे। त असां जेको आलसी जीवन पिया बितायूं, हाणे असां उहो आलसी जीवन छॾे करे व्यायाम करे ऐं पाण खे तंदुरुस्त बणाइण जे रस्ते ते असां हली रहंदासीं त असांजा रोग बि पूरी तरीक़े सां ठीकु थींदा। त हिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सभिनीनि खां वधीक ज़रूरी आहे हिकु कलाकु पंहिंजे लाइ कढणु। 24 कलाकनि में जंहिं वटि पंहिंजे लाइ हिकु कलाकु कान्हे, पोइ जीअणु बेकार आहे। जीअणो आहे, तंदुरुस्त जीअणो आहे, बिना दवा तंदुरुस्ती हासिलु करणी आहे, त योग जे माध्यम सां केवल हिकु कलाकु पंहिंजे शरीर खे ॾेई करे शारीरिक व्यायाम करे तंदुरुस्त रही सघूं था।
1: सही आहे इहा ॻाल्हि त अगरि असांजो शरीर स्वस्थ आहे त असांजो जीवन बि स्वस्थ आहे,
0: पूर्ण रूप सां स्वस्थ रहंदासीं। हाँ। असां
1: योग ज़रूरी छो आहे?
0: योग जे प्रकार सां असांखे खाधो ज़रूरी
1: आहे,
0: जंहिं प्रकार सां असांखे सुम्हणु ज़रूरी आहे, जंहिं प्रकार सां कमु करणु ज़रूरी आहे, जंहिं प्रकार सां आमदनी असांखे हुजणु जुड़े उहो ज़रूरी आहे, तंहिं प्रकार सां मन जी शांती ऐं शरीर जी तंदुरुस्तीअ जे लाइ योग ज़रूरी आहे। जीअं ध्यानु जेको आहे उहो आत्मा जो भोजन आहे, शरीर जो भोजन त असां रोटी था खाऊं, पर आत्मा खे अगरि असांखे स्वस्थ बणाइणो आहे त शरीर स्वस्थ थींदो, शरीर स्वस्थ थींदो त उन जे लाइ ध्यान जी प्रक्रिया जेकी आहे मन खे शांति कंदी आहे, छो की असांजा 90% प्रॉब्लम्स जेके आहिनि माइंड खां, दिमाग़ खां चालू थींदा आहिनि ऐं शरीर जे मथां रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि, कारण वीचारनि में आहे। इन जे लाइ जेॾी महिल चवंदा आहियूं की पंहिंजा वीचार नकारात्मक थींदा आहिनि त शरीर में कीअं पंहिंजे मथां, शरीर जे मथां बीमारियूं रिज़ल्ट कंदियूं आहिनि, त इहो साइकोसोमेटिक डिज़ीज़िस खे ओरिजन कंदो आहे। त इन सां छा थींदो आहे न कि कारण त दिमाग़ में हूंदो आहे, उन जा रिफ्लेक्शन शरीर ते ॾिसंदा आहिनि, कमज़ोरी थियणु त ॾिसंदा आहियूं, पाण गुस्से में केतिरो एंज़ाइटी थी वेंदी आहे त कीअं हथ पेर कापंदा आहिनि असांजा। त इहो आहे कि तनाव जो शरीर जे मथां प्रभाव, ऐं पोइ शरीर जा अंग जेॾी महिल पंहिंजो कमु करणु छॾंदा आहिनि, पोइ शरीर खे बीमारी थींदी रहंदी आहे। त असांखे मन खे जेॾी महिल ध्यान जी प्रक्रिया सां शांति कंदा आहियूं ऐं असांजो प्रफुल्लता जेॾी महिल ख़ुशी वधंदी आहे, आनंदित रहंदा आहियूं असां, त तेॾी महिल शरीर जे अंदरि कोई सूर कोन महसूसु थींदो आहे, कोई तकलीफ़ कोन महसूसु थींदी आहे, असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त महसूसु कंदा आहियूं, वधीक कमु करे सघंदा आहियूं, एनर्जी अची वेंदी आहे।
1: योग सां कहिड़ियूं बीमारियुनि जो इलाजु थी थो सघे?
0: योग सां अॼु जी तारीख़ में अगरि ॾिठो वञे, एट प्रेज़ेंट जेके माण्हू आधुनिक जीवन में योग अपनाइनि था, ॾाढा माण्हू आहिनि जंहिं पंहिंजे जीवन शैलीअ जे संबंधित बीमारियुनि खे पूर्णता ठीकु करे वेंदो आहे। डायबिटीज़ आहे, हाइपरटेंशन आहे, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आहे, गोॾनि जी तकलीफ़ आहे, एड़ियुनि जी तकलीफ़ आहे, शोल्डर जी तकलीफ़ आहे, साह खणण में तकलीफ़ आहे, या इवन मेंटल प्रॉब्लम्स आहिनि जीअं डिप्रेशन आहे, एंज़ाइटी आहे,
1: या डिप्रेशन जेको तव्हां चयो एंज़ाइटी, अॼुकल्ह ॿारनि में हिकु इहो वर्ड डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ाइटी, मतिलबु इहे मां टे वर्ड सम्झां थी कि अॼुकल्ह हर हिकु शायदि नंढो ॿार बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु दोहराईंदो आहे, मां डिप्रेशन में आहियां. इन डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटीअ मां बि मतिलबु योग करे असां इनखे ख़तमु करे
0: था सघूं.

0: करे सघूं। योग में एतिरी शक्ति आहे छोकी असां हींअर छा आहे पंहिंजो स्वाद इंद्रियूं आहिनि, असां स्वाद इंद्रिय जे वश में आहियूं, जबकि थियणी घुर्जे असांखे स्वाद इंद्रिय खे पंहिंजे वश में करणु घुर्जे। त पंज इंद्रियूं जेके आहिनि उन्हनि खे असां पंहिंजे कंट्रोल में कंदासीं त असां डिप्रेशन खां, एंज़ाइटी खां ऐं शारीरिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन्हनि सभिनी सां ठीकु करे था सघूं, छोकी पंच कोश जे आधार ते असांजो शरीर निर्माण थियो आहे। योग में चवंदा आहिनि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। त मनोमय कोश में कारण आहे त असांजो प्राणमय कोश बि अफेक्ट थींदो ऐं उनजो रिफ्लेक्शन अन्नमय कोश शरीर ते ईंदो। असां अगरि माइंड खे ठीकु था कयूं, मन खे अगरि ठीकु था कयूं, वीचारनि में सही था कयूं, त नेगेटिव थॉट्स जेके ॿारनि में अचनि था जंहिंजे करे डिप्रेशन थिए थो, अगरि उन्हनि थॉट्स खे असां मेडिटेशन करे ऐं योगा करे असां अगरि उहो पॉज़िटिव करे था विझूं ऐं पॉज़िटिव सकारात्मक सोच रखनि था त ॿारनि जो डिप्रेशन पूरी तरीक़े सां ख़तमु। ऐं मनोमय कोश ठीकु थींदो त प्राणमय कोश, असां आनंदमय कोश, अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन छा आहे कि शरीर जे अंदरि कोई बि पीड़ा न हुजे, कोई तकलीफ़ न हुजे, मन हमेशह तंदुरुस्त हुजे, पीस हुजे शरीर में, त असां स्वस्थ आहियूं न त बीमार आहियूं। त योग अहिड़ी कला आहे जेको न केवल बीमार माण्हू थो करे सघे पर स्वस्थ माण्हू बि कंदो त बीमारी कान थींदी।
1: जी इहा त सही ॻाल्हि आहे, मतिलबु पहिरियों खां ई पंहिंजी तयारी करे छॾिजे की अॻियां हली करे असांखे कोई बि बीमारियूं न वेड़े वञनि।
0: जी
1: हिकु ॻाल्हि बि मां पुछणु चाहींदमि की अॼुकल्ह ॿार जेके आहिनि ॿाहिरियों खाधो ॾाढो खाईंदा आहिनि, असां ॾिसंदा आहियूं की पिज़्ज़ा, बर्गर, इहे फास्ट फूड त ॾाढो था खाइनि। अगरि उहे खाई करे ऐं योग कनि त उहे छा उन्हनि जे मथां इफेक्ट ओतिरो ही रखंदा की उनजो घटि थी वेंदो?
0: भगवत गीता में भॻवानु श्री कृष्ण ॾाढो सुठो जेको आहे न भोजन जे मथां वाक्य ॾिनो अथई। इन में टे प्रकार जा असांजी प्रकृतिअ जे आधार ते टे प्रकार जा भोजन थींदा आहिनि, सत्व गुण, रजस गुण ऐं तमस गुण। इहे टे गुणनि जे आधार ते असांजी प्रकृति जो निर्माण थींदो आहे, शरीर जो निर्माण थींदो आहे। असां जैसा खाए अन वैसा होगा मन, हाणे मन ओड़ो थींदो जहिड़ो रोटी खाईंदासीं, जैसा हो मन वैसा होगा तन, त जहिड़ो मन हूंदो तहिड़ो तन थींदो ऐं जैसा हो तन वैसा हो आपका जीवन। त असांजो जीवन कहिड़ो थियणो आहे उहो असांजे भोजन ते थो तय करे, असांजो मन कीअं थियणो आहे असांजे भोजन ते थो तय करे। त सात्विक भोजन खाईंदासीं त ऑटो असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त था रखूं, राजसिक ऐं तामसिक खाईंदासीं त चिड़चिड़ो सुभाउ, अहिड़ा व्यवहार पंहिंजो रहंदो जेको शरीर खे बि नुक़सान कंदो रहंदो। त ॿारनि खे जेतिरो थी सघे असां जंक फूड खां परे रखूं ऐं प्राकृतिक औषधीय आहार ॾियूं, जीअं सात्विक आहार आहे ऐं उन्हनि जा वीचार सात्विक थींदा, पोइ न हू कॾहिं चिड़चिड़ कंदा न गुसो कंदा। अॼुकल्ह ॿारनि में केतिरो गुसो ऐं चिड़चिड़ो थी पियो आहे, त उन्हनि जे लाइ त सभिनीनि खां बेस्ट आहे की उन्हनि खे अगरि असां सात्विक आहार ॾियूं था ऐं उन सां अगरि हू पंहिंजी प्रकृति सात्विक ठाहिनि था त तव्हां उन्हनि जे ॻाल्हाइण में बि नम्र व्यवहार महसूसु कंदव, त उहो उन सां फ़र्क़ु पवंदो। पर सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे पतंजलि योग जेको आहे अष्ट अंगनि ते आधारित आहे, जंहिंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अल्टीमेट रियलाइजेशन छा आहे असांखे समाधिअ ताईं पहुचणो आहे, पर असां ॾाढा माण्हू अट्रैक्ट थी करे केवल आसन ते रुकजी विया आहियूं, केवल योगा मतिलबु आसन शारीरिक व्यायाम न, इन जा रूल्स ऐं रेगुलेशन जेके आहिनि कि असांखे सच ॻाल्हाइणो आहे, ब्रह्मचर्या जो पालन करणो आहे, भॻवान खे सरेंडर करणो आहे, शरीर ई साफ़ु सुथिरो रखणो आहे, आंतरिक शुद्धिकरण करणो आहे। इहे रूल्स ऐं रेगुलेशन आहिनि कि असां कंहिंखे चोट कान पहुचाईंदासीं। पहिरीं इहे नियम में असां परिपक्व थी वेंदासीं, असां परफेक्शन अची वेंदो, पोइ असां आसन, प्राणायाम ऐं प्रत्याहार करे था सघूं, तॾहिं त विड्रॉवल थींदो सेंसस जो। पर असां शॉर्टकट अपनाए करे थर्ड सिधो अंग ते पहुचंदा आहियूं, आसन कयूं, प्राणायाम कयूं ऐं थी वियो योग। न, बेसिक फर्स्ट स्टेप आहे यम ऐं नियम, उनखां पोइ आसन, पोइ प्राणायाम, पोइ प्रत्याहार ऐं धारणा, ध्यानु, समाधि। त उहो तेॾीमहिल ई थी सघंदो असांजो आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि, जेॾीमहिल रूल्स ऐं रेगुलेशन इन स्टेप सां हलंदासीं। त अॼु जे मॉडर्न जीवन में हिन बिज़ी दौड़ भाग में सभिनीनि खे सभु चवंदा आहिनि असां वटि टाइम कान्हे,
1: सभिनी खां वॾी परेशानी
0: टाइम कान्हे। ऐं टाइम कान्हे त जंहिं वटि पंहिंजे शरीर जे लाइ टाइम कान्हे, अॼु अगरि तकलीफ़ हूंदी, शरीर बीमार हूंदो, हॉस्पिटल में भर्ती थियासीं, पोइ बि त शरीर जे लाइ टाइम कढणो आहे।
1: बिल्कुलु।

0: अॼु अगरि असां टाइम कढियोसीं ऐं अॼु योग करे असां पंहिंजे पाण खे तंदुरुस्तु करे वेंदोसीं त असां हॉस्पिटल जो ख़र्च बि बचाईंदासीं ऐं हॉस्पिटल जो टाइम बि बचाईंदासीं जेको वञिणो आहे। त जीअं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थींदी आहे अॼुकल्ह एड्स ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं, हा न, 28 रुपया ॾियो करोड़ जो तव्हांजो लाइफ इंश्योरेंस थी वेंदो। मां चवंदो आहियां तव्हां कलाकु पंहिंजे शरीर खे रोज़ु ॾियो, तव्हांजो 365 ॾींहनि जो इंश्योरेंस
1: आहे।
0: तव्हांखे न इंश्योरेंस जी प्रीमियम ॾियणी पवंदव ऐं न बीमार थींदव।
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे।
0: त असां पंहिंजो ऐं जंहिं वटि वधीक टाइम आहे, जेको रिटायर्ड आहे, उहो 2 कलाक ॾिए 3 कलाक ॾिए। त शारीरिक व्यायाम छो ज़रूरी आहे, छोकी शरीर जे अंदरि जेकी गंदगी आहे न, उहो शरीर खां ॿाहिरि निकिरंदी पसीने जे माध्यम सां, पेशाब जे माध्यम सां, श्वास जे माध्यम सां, मल जे माध्यम सां। त असां खाइण में पंहिंजे शरीर जे अंदरि गंदगी विझूं था, पर कढण जे टाइम ते असां व्यायाम कान था कयूं। ऐं व्यायाम पौष्टिक तत्व जेके आहिनि शरीरनि खे लॻनि, कचरो शरीर खां ॿाहिरि निकिरे, इन बैलेंस जे लाइ योग, प्राणायाम, वॉक, जॉगिंग करणु, इहे असांखे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करणियूं हूंदियूं आहिनि। त जेको माण्हू शारीरिक व्यायाम करे थो न, उहो कॾहिं बेड ते कान ईंदो मरते दम ताईं, उहो हमेशह स्वस्थ रहंदो। तव्हां ॾिसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 200 कंट्रीज़ में हींअर सेलिब्रेट थिए थो। 21 जून ते असां इंटरनेशनल योगा डे मल्हाईंदासीं, डे ऑफ योगा। माननीय प्रधानमंत्रीअ जो इनिशिएटिव हो, 10 सालनि खां असां जॻह जॻह ते सेलिब्रेट कंदा था अचूं। हींअर योगा संगम ऐं योगा समावेश हरित योग, इहो कार्यक्रम हिन टाइम ते प्रधानमंत्री जन आयुष मिनिस्ट्री जे माध्यम सां लॉन्च कयो आहे। 11वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते संगम मतिलबु सभिनीनि खे कनेक्ट करणु, जोड़णु,
1: जो योग जो मतिलबु ई हूंदो आहे की जोड़णु।
0: हा, त सभिनीनि खे जोड़णु ऐं वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली।
1: केॾी सुठी ॻाल्हि आहे।
0: त इहो उद्देश्य सां जेॾी महिल असां हलूं था, त तव्हां ख़ुदि सोचो असांजो फैमिली बि हिकु आहे, असांजो अर्थ बि हिकु आहे, असांजो फ्यूचर बि हिकु आहे ऐं असांजी हेल्थ बि हिकु आहे। त सभिनी जे स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य जे लाइ अगरि योग कंदा रहंदासीं त हमेशह तंदुरुस्त रहंदासीं, कॾहिं बीमारी कान थींदी। न न, रोग मुक्त भारत जो निर्माण योग सां ई थी सघे थो ऐं योग सां 90% बीमारियूं ठीकु थी वेंदियूं, छोकी मन में जेकी बीमारी थी आहे उहा तन ते लथी आहे। तन जी बीमारी ठीकु करणी आहे त पहिरीं मन खे ठीकु
1: करणो पवंदो,
0: ऐं मन ठीकु आहे त सभु ठीकु
1: आहे, सभु ठीकु
0: आहे। मन ठीकु कान्हे
1: त कुझु बि ठीकु कान्हे। पाण असां ॾिसंदा पायूं की खाधे जो बि फ़र्क़ु पवंदो आहे
0: ॾाढो।
1: जीअं असांजा बुज़ुर्ग ॾिसूं त उहे अॼु जी जेकी नई टही आहे उन खां वधीक सुठे सां हली सघंदा आहिनि ऐं वधीक कम बि करे सघंदा आहिनि। मतिलबु आलसपन जेको असां ॾिसूं पिया था की अॼुकल्ह जी जनरेशन में, अॼुकल्ह जे ॿारनि में, उहो त वधीक ई आहे। त योग करण सां छा आहे की इहो आलसपन बि वेंदो आहे, है न, जीअं मानसिक तव्हां चयव त मानसिक और फिज़िकल ॿई स्ट्रेंथ थियूं अचनि।
0: रोटीअ जो जेको आहे तव्हांजे खाधे जो चयो, ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आहे। हिकु ॻाल्हि ध्यानु पई अचे, पहिरीं असांजा बुज़ुर्ग जेके आहिनि उहे चवंदा घटि खा, गम खा, डॉक्टर वटि कॾहिं न वञ।
1: अरे वाह,
0: हाणे जेको आहे न, हाणे चवंदा आहिनि वधीक खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाओ, वधीक खाओ ऐं रोज रोज डॉक्टर जा चक्कर लॻायो
1: ऐं गम बि न खाओ,
0: गम बि न खाओ।
1: सही आहे। हाणे हलंदे हलंदे असां इहो मां चवंदमि की नई टई ऐं असांजे श्रोताउनि खे तव्हां योग जे बारे में छा मैसेज ॾियणु चाहींदव?
0: मां त श्रोताउनि खे हिकु ई मैसेज ॾींदमि की अगरि असां जीवन में बदिलाउ चाहियूं था, परिवर्तन ऐं पंहिंजे पाण खे हमेशह तंदुरुस्तु रखणु चाहियूं था, त पंहिंजे लाइ टाइम कढूं, जेको कंहिं वटि आहे कान, पर तव्हां 30 मिंट 30 मिंट बि अगरि तव्हां पंहिंजे लाइ कढंदा, कलाक बि पंहिंजे लाइ कढंदा, ऐं योग केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जे लाइ न कयूं, योग खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं, पोइ तव्हां ॾिसंदा न डिप्रेशन रहंदो, न शरीर जी प्रॉब्लम रहंदी, कुझु प्रॉब्लम कान रहंदी। इन जे लाइ तव्हां ऑफिस में आयो तॾहिं बि योग करे था सघो, प्राणायाम त उते वेठे वेठे बि था करे सघो, ईअं त आहे कान कान था करे सघो। त इन जे लाइ करण जो मन ठाहिणु, इहो मुंहिंजो संदेश आहे की असां करण जो मन ठाहियूं ऐं करण प्रारंभ कयूं। अगरि चालू कंदासीं तॾहिं ई सफलता हासिलु थींदी, न त सफलता हासिलु कान थींदी।
1: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जीअं माण्हू पंहिंजे लाइ टाइम कढनि था, जीअं सिनेमा ॾिसण लाइ टाइम कढनि या कुझु बि कहिड़ी बि एक्टिविटी करण लाइ टाइम कढनि था, त उन लाइ बि टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी आहे।

0: ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायव योग जे बारे में. तव्हांजो घणो घणो महिरबानी आहे की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं योग जे बारे में असांखे हेॾी सुठी जानकारी ॾिनव.
1: धन्यवाद.
0: धन्यवाद दोस्तो. हाणे वधूं था हिकु ॼाण जी तरफ़. वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ही ॾींहुं असांखे अहिड़ी महान वीर नारीअ जी यादि ॾियारींदो आहे जंहिंजे साहस, त्याग ऐं देशभक्ति इतिहास जे सुनहरे अखरनि में लिखियलु आहे. रानी दुर्गावती भारत जी अहिड़ी महान वीरांगनाउनि में शामिल आहे जंहिं पंहिंजो राज्य, प्रजा ऐं सम्मान जी रक्षा करण लाइ पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾी. नंढपण खां ई हुन में वीरता, आत्मविश्वास ऐं नेतृत्व जी भावना हुई. उहा युद्ध कला, घुड़सवारी ऐं शस्त्र हलाइण में माहिर हुई. राणीअ जो विवाह गोडवाना जे राजा दलपत शाह सां थियो. राजा दलपत खां पोइ पंहिंजे पुट वीर नारायण जे संरक्षक जे रूप में राज्य जो शासन संभालियो. हुन न केवल कुशलता सां राज्य हलायो, गॾोगॾु प्रजा जे कल्याण ऐं विकास लाइ घणेई कम बि कया. जॾहिं गोडवाना ते मुग़ल सेना हमिलो कयो, तॾहिं राणी दुर्गावती हिमत हारण जे बजाए दुश्मननि जो डटे करे मुक़ाबिलो कयो. हुन पंहिंजे सैनिकनि सां गॾु युद्ध जे मैदान में लही वीरता जो शानदार उदाहरण पेश कयो. युद्ध जे हलंदे घायल थी वञण खां पोइ बि हुन हार न मञी. 24 जून 1564 जे ॾींहुं राणी दुर्गावती पंहिंजे स्वाभिमान ऐं स्वतंत्रता जी रक्षा कंदे वीरगति पाती. हुन आत्मसमर्पण खां बहितर बलिदान ॾियण खे सही समुझो. हुननि जो त्याग ऐं बलिदान अॼु बि असांखे प्रेरणा थो ॾिए. रानी दुर्गावतीअ जो जीवन असांखे इहो सेखारींदो आहे त मुश्किल हालात में बि हिमत, आत्मविश्वास ऐं सचाई कॾहिं न छॾणु घुरिजे. हुन जो बलिदान ख़ासि करे ज़ाइफ़ाउनि लाइ प्रेरणा आहे त नारी शक्ति हर चुनौतीअ जो डटे करे सामनो करे सघे थी. अचो त गॾिजी मिली असां सभु महान वीरांगना खे श्रद्धापूर्वक नमन करियूं ऐं इन सां गॾु गॾु ॿुधूं था घनश्याम वासवानी ऐं दादा दुखायल जो गायल ही सुहिणो देशभक्ति गीत.

दोस्तों, नशो इंसान जी जिंदगी जो एक अड़ो दुश्मन है जो धीरे धीरे उन सेहत परिवार सम्मान ए भविष्य के बर्बाद कर छो है। शराब तंबाकू गुटका सिगरेट ए बियू भी नशेलियों शयू शरीर के तो नुकसान पहुंचाएन ही थियं, पर मानू की सोच व्यवहार सोचण ए निर्णय की क्षमता के भी खराब असर पहुंचाएन थियं। अज घना नौजवान गलत संगत तनाव या फैशन के हलंदे नशा था कन, पर उनके यो समझण घुर्जे तो कड़ो भी नशो कें भी समस्या जो हल ना है। नशो तो पान ही समस्या वधाइंदो आहे, इंसान के पेंजे लक्ष्य ए सफलता खां परे थो करे। नशे के कारण घणे परिवार तबाह थी वेंदा आहिनि, घणियूं बीमारियूं वधंदियूं वेंदियूं आहिनि, पैसे के नुकसान सां गड

समाज में अपराध खे भी वधाईंदो आहे। नशो करण वारो इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ सां गॾु पंहिंजे परिवार जी ज़िंदगीअ खे बि ख़राबु करे छॾींदो आहे। हिकु स्वस्थ ऐं प्रगतिशील समाज तॾहिं ई बणिजंदो जॾहिं असांजी नई टई नशे खां पासो करे, शिक्षा में, खेल कूद में, योग ऐं सकारात्मक सोच में अॻियां वधे। इहे संस्कार उन्हनि खे घर मां ही मिलंदा। मुंहिंजी त सभिनी माउ पीउ ऐं वॾनि सां निमाणी वेनती आहे त तव्हां बि पंहिंजे ॿारनि या कंहिंखे बि नशो कंदे ॾिसो त उन्हनि खे रोकणु तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे। पंहिंजे समाज में नशे जे नुक़सान खां सभिनी खे जागरूक करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। दोस्तो, इन्हीअ सां गॾु ॿुधूं था हिकु सुहिणो गीत।

दोस्तो इन्हीअ खां पोइ हिकु मां ॿी ॼाण ॾियणु चाहींदमि। असांजे मोदी सरकार खे 12 साल पूरा थिया आहिनि। सरकार जी जॾहिं 12 साल पूरा थिया तंहिं दौरान मुल्क जी तरक़ी, खु़शहाली ऐं आवाम जी भलाईअ लाइ घणेई कम कया विया। गुज़िरियल 12 सालनि में मुल्क में घणेई अहम तब्दीलियूं आयूं। तरक़ीअ जा कम थिया, ग़रीब किसाननि, जाइफ़ाउनि ऐं नौजवान या समाज जे कमज़ोर वर्गनि जी भलाईअ लाइ घणेई योजनाऊं बि शुरू कयूं वयूं। साफ़ सफ़ाई, इलाज, पाणी, बैंकिंग ऐं डिजिटल सहूलियतुनि खे आम माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिशि कई वई। कुझु अहिड़ियूं योजनाऊं जिन जो मां ज़िक्र कयां थी, 81 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे हर महीने मुफ़्त राशन ॾियणु, 10 करोड़ खां वधीक उज्ज्वला गैस कनेक्शन लॻाइणु, 70+ वारे बुज़ुर्गनि खे 5 लख जो मुफ़्त उपचार ॾियणु, 60 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे आयुष्मान भारत जी सुरक्षा, 26 शहरनि में मेट्रो जी सुविधा, 164 वंदे भारत ट्रेन जी सुविधा, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, पवन समुद्री जहिड़ा वॾा वॾा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो निर्माण, देश भर में 2 लख स्टार्टअप, MBBS सीटुनि जी संख्या लॻभॻ 1.3 करोड़ थी वई, आतंकवाद ते कड़ो प्रहार थियो, करीब 38,400 करोड़ जा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट, ग़ुलामीअ जी मानसिकता खां मुक्ति, 4 करोड़ खां वधीक किसाननि खे 2 लख करोड़ जो फसल बीमा योजना ॾियणु, किसाननि लाइ लॻभॻ 4 लख करोड़ खां वधीक PM सम्मान विधि ॾियणु, 32 करोड़ खां वधीक जाइफ़ाउनि जो जन धन खातो खोलणु, सेना में जाइफ़ाउनि खे स्थायी कमीशन मिलणु ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिं जो शायदि मां ज़िक्र न कयो आहे। लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे। तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि, पर असांखे मिली करे इन

चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे। त दोस्तो, असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे, पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं। दोस्तो, हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेदु आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जाँच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे

जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्नड़ गीत, रचना बी आर गीता की है।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ?
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना है? इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए।
1: हाँ? हाँ।
0: हाडू तिहवो हारू तिहवो
1: हाडू तिहवो हारू तिहवो
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे
0: हसीव मरेसी
1: हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: हाँ तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा हाँ। वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहली अंतर था ना बान लोक नगुना का उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। इसमें आज आपने सुना कन्नड़ गीत, रचना थी बी आर गीता की। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से 2 स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्जारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
3: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमुरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमुरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
2: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
4: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गाँव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूक फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
2: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
3: हमने सबसे पहले गाँव-गाँव के महिलाओं को जाकर सहायता किया। SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
2: सनकदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
4: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गाँव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है, महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें हर, जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में, अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गाँव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारी जगहों पे डस्टबिन भी बनाए है और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर

0: गैस जो होता है वो यूज हो,
1: जी
0: लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पोल्यूशन होता है उससे उसका उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस एलपीजी यूज करते हैं, और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है। हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर्ड ही है।
1: गीतांजलि, ये एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
2: हम लोग गाँव में जो पंचायत वार्ड है, एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप को हम लोग को गांव गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
1: और सरनदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
0: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गाँव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
2: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना
1: जी।
2: और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: संविधान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गाँव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गाँव में।
1: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है, उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
1: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गाँव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गाँव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं वो हमें सूची देते हैं कि कितने पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं।

0: और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं और हमें यह बात समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है। इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं, वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
0: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
0: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है, हमने पेपर वर्क फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गांव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गाँव के आस पास जितने भी घर है उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेकश्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियाँ हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए, हमारे जितने भी गाँववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

0: असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बाजीगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। देव कोहली के ने इस गीत को लिखा था और अनु मलिक ने इसकी तर्ज बनाई थी। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं।

0: दिल तो पागल है फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी उदित नारायण और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के बोल थे और उत्तम सिंह ने इसकी तर्ज बनाई थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: जबलपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट यूजी पुनर्

0: परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 075। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
3: फोन करें गीत सुने।
2: जी फोन करें गीत सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।
3: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, सर ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह।
2: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं आप?
3: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
2: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
3: तो तैयारी चल रही सर, सोयाबीन बो
2: भी की। जी अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि बोया जा सके।
3: गर्मियों में मूंग बोई थी सर, कटाई पटाई हो गए, बखानी वगैरह हो गई है सर।
2: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
3: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
2: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
3: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
2: जी,
3: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
2: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
3: सर बहुत पसंद है उसके बोल अच्छे।
2: जी जी बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो सर, नमस्कार
1: नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने
0: सर। नमस्कार, मैं गावली हेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
1: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका दिनेश चौहान जी। क्या करते हैं आप?
0: सर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वायरिंग का।
1: मोटर वायरिंग का काम करते हैं?
0: हाँ, जो कूलर पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो जल जाते हैं ना।
1: बहुत बढ़िया। तो अभी तो आपका बिल्कुल सीजन का टाइम चल रहा होगा, अभी तो बहुत बिजी होंगे आप।
0: हाँ बहुत बिजी है सर, क्योंकि सीजन का टाइम है, वो ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पंखा मंखा वायरिंग करते हैं।
1: ठीक है।
0: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको फोन
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के।
0: हाँ, सुनते सही बात बोले सर आपने,
1: है ना।
0: तो गाने वाने सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है, तो इसमें जानकारी भी मिलती रहती है, तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अपने को मिलती रहती है, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियां देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
0: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
1: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो, नमस्कार।
1: हेलो हेलो,
0: नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, ना गर्म है ना नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और सर और सब बढ़िया?
0: बढ़िया। आप बताएं, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं?
1: हम सर जी हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए, गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ जी वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार,
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ साहब, राजेश अग्रवाल।
0: राजेश अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: तो वो पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है 1980 की?
0: जी गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है। हाँ रफी साहब और आशा जी की आवाज
0: बड़े मतलब

0: अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं, वो तो सर अच्छा लगता, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक गीत की श्रेष्ठता की पहचान हुआ करती। तो चलिए, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगी, सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीबन 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नौकरी से मीना दसौंधी बोल रही।
0: मीना दसौंधी खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही
1: है। जी सर पहली बार हो रही है। सर आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउसवाइफ हूँ सर।

0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे से।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है अभी, उनका मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है, नूर खुदाया तुझमें सब है।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है ना। और हमारा
1: देख रहे हैं माता पिता की वजह से, उन्हीं की देन है।
0: जी जी जी। आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं अपने

0: सुनने सब है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जब कि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है
0: जी
1: ना।
0: सर, हम
1: और
0: लोग जो
1: हमारा
0: दुनिया देख रहे हैं सब माता
1: जी
0: पिता की वजह से ही, उन्हीं की देन है।
1: जी जी जी आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं, और है
0: सबसे
1: ना
0: पहले वो फिर अपन।
1: वही। जी जी जी और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया होते
0: जी
1: हैं,
0: सर,
1: है ना।
0: वैसे तो
1: और
0: सर हर रोज फादर्स डे मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे रहे तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
1: जी, देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना।
0: जी सर, उनको तो
1: और
0: हर
1: उनको
0: मिनट
1: मान
0: का
1: देंगे तो
0: महसूस
1: हमारे
0: होता है।
1: रास्ते अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और
0: जी
1: रास्ते कितनी भी परेशानियां आए वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो
0: जी
1: जाएगी, है ना।
0: माता
1: या
0: पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये चार पांच तो बिल्कुल आदरणीय है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार।
0: फोन करें, गीत सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी किससे
1: हेलो।
0: बात हो रही है? हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानासिला, तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: राजेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है तो
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: नाल
0: बढ़िया।
1: बजाते हैं और गायकी भी करते हैं।
0: क्या बजाते हैं?
1: नाल नाल
0: नाल? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
1: के मतलब ढोलक।
0: ढोलक बजाते हैं। अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो, संगीत हो, है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: तो
1: रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते थे। मैं रेडियो का सुन से बहुत बड़ा फैन। मुझे रेडियो बिना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
0: रेडियो है ही ऐसी चीज़ भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और किसी ने हमको बताया, रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो
1: हाँ, अब
0: बात
1: तो
0: कितनी सही थी
1: अगर
0: कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मज़ा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा, जबकि मेरे यहाँ डेग रखा हुआ है दुकान सबको, लेकिन मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
0: जी जी जी जी
1: बहुत दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लग पाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
0: तो ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी?
1: मुझे याद था कि
0: देखिए राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम, है ना।
1: हाँ, सही कहा आपने।
0: हाँ, बताइए
1: उसका सुना दीजिए, खिलौना फिल्म है, खिलौना।
0: जी।
1: अगर वो गाना है, लता जी ने गाया हुआ है, तू सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, वो एक गाना लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है। और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
0: बहुत अच्छा। पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ
1: हाँ
0: यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत
1: जी
0: का
1: जी जी
0: आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देना है इनको।
1: साइलेंट में रखो पहले नीरज,
2: ये दरवाजा लटकवा देना भैया, दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा।
3: नमस्कार श्रोताओं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, जो भी है बात साफ साफ ज़रूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुँचे मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेज़ी में तैयार दस्तावेज़ों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। ये पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी।

मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी।
वाकई पदक विजेता

प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं, जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कारधानी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग, श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।

ऑनलाइन डिस्कनेक्ट है।

0: दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।
1: अपन को भी एक माइक मिलना चाहिए।

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घा पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है। और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।

0: कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
1: अनुमति है।
0: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
2: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायकगण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को एक ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि A+ से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा A+ ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है व 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इनक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरम्भ किए गए। BTech, कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत

0: विश्वविद्यालय के प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 PhD धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 DSc और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी को
1: गौरव की प्रतीक जी की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी, कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी, कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021, दीपांशु मिश्रा, MA हिंदी साहित्य परीक्षा, 2 स्वर्ण पदक। कल्याणी त्रिपाठी, MA संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तालियां बजती रहें। कल्याणी त्रिपाठी, MA संस्कृत महिला परीक्षार्थी, 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी, MA दर्शन शास्त्र परीक्षा, 3 स्वर्ण पदक।

शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी एमए इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

श्री शिवेंद्र सिंह एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। देवेंद्र मिश्रा बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: अब मैं प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मनमोहन पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए ये भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष खातिर रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्य प्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा, ये आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सहित सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए, और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे ही हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंते निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया उसको आज्ञा का पालन करो, और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा, लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है। जब शासन

0: के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी जीरो की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी भाभी मैडम को भी आपको भी प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
2: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है। उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर गोंडवाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी की दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्ज्वल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूँगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण

0: नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं। जब भी हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटा भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको पांच पांच गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूँ कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूँ, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरूरत कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूँगा कि आपने अच्छी तरह आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही।

रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है वे अदम्य साहस शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरंगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजनों, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जब सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 इयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। जो भी बेटियाँ, जो भी बेटाएँ कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज़ को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज़ को बार बार दोहराती हूँ, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक,

ये सभी प्रदेश का सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज़ है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं और बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम, और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक।

0: निदेशक अभियांत्रिकी श्री वली उल्ला खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्याम लाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपम कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूं अपने स्टूडियो। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आ अब लौट चलें फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

केसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे गाया था अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की है आवाज में। फिल्म का नाम है कलंक।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों का गाया विकास गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गाए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुर्जर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कार्यक्रम के अंत में गुलजार का लिखा ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म है मौसम।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में देशभर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, POS मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्रों को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया।

0: मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताब ते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के

0: स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको

0: प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई।

0: बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

बैपटिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। बन तो पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है और एक नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे सुकून पाता है। बल साथियों, पिता घर का वो हिस्सा होते हैं जो खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। बल साथियों, माँ यदि जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। पिता ही वो इंसान होते हैं जो कभी माँ का प्यार देते हैं तो कभी शिक्षक बनकर गलतियां बताते हैं तो कभी दोस्त बनकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक तरक्की करे, उनसे भी अधिक नाम कमाए। बल्कि तो जीवन को दिशा देने वाले पिता के लिए एक खास दिन मनाना हमारे जीवन में दिए गए उनके योगदान के समतुल्य तो नहीं हो सकता, पर फादर्स डे के रूप में हमें वो मौका जरूर दिया है जब हम उनके प्यार, मदद और अपनेपन को महसूस कर उनसे ये कह सकें कि मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी बनूंगा वो आपके बिना संभव नहीं था। तो चलिए बाल साथियों, देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। और बाल साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है तो आप यही कह उठेंगे,

लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज है जून माह का तीसरा रविवार और आज हम सभी फादर्स डे यानी पितृ दिवस मना रहे हैं। ये पिताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बाल मित्रों पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के लिए हुई। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई वर्ष 1908 में इसे मनाया गया था। ग्रेस गोल्डन क्लिंटन द्वारा प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड

बाल साथियों, अभी आपने सुना मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की। समीर के गीत को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बाल मित्रों, आज हम सभी योग दिवस भी मना रहे हैं। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने आप से ही अलग से हो गए हैं और योग हमें पुनः अपने आप से जोड़ने में मदद करता है। बाल साथियों, योग मन शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है और ये दिवस इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए ही मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ये सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बाल मित्रों, 21 जून वर्ष 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में

0: बनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे सभी ने उत्साह के साथ मनाया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया। हम आपको बता दें बाल मित्रों कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। बाल मित्रों, हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी हैं जिन्हें उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है और वे हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बाल साथियों हमारे देश की वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी किए। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। बाल मित्रों, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही आपका नाम दुर्गावती रखा गया। मैंने तो रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। वर्ष 1542 में आपका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। 50 से भी अधिक युद्ध उन्होंने लड़े। इतना ही नहीं बाल मित्रों, रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अकबर रानी के राज्य को हड़पना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने की ठानी और वर्ष 1564 में दोबारा रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आईं। लड़ते लड़ते रानी घायल हो गईं और 24 जून को लड़ाई के दौरान ही अपने आप को सुरक्षित ना देख उन्होंने अपनी ही तलवार अपने पेट में घुसा ली और वीर गति प्राप्त की। और इस तरह इस वीरांगना ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। बाल मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बालिका आई हुई है जिसके हाथ में हम देख रहे हैं एक गिटार है। चलिए जानते हैं कि ये गिटार बजाती हैं तो क्या साथ में गाती भी हैं। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम आर्या खरे है।
0: आर्या खरे। आर्या, हम आपके हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो आप गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपको गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ?
1: जी, मैं एक मूवी देख रही थी कि उसमें मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। देन मेरे घर में एक गिटार रखा हुआ था जो कि 2 साल से पैक था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे निकाल के यूज करूँ। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, उसके डिटेल्स निकाले, देन बेसिक मैंने यूट्यूब से सीखा। उसके बाद आज मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: मतलब आपने, आपको इंस्पिरेशन मिली, यूट्यूब से आपने निकाला और वहीं से आपका ये सफर शुरू हुआ।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगी?
1: जी, मैं एक भजन सुनाऊंगी गिटार पे, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
0: चलिए सुनाइए।

0: बहुत ही प्यारा भजन आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आर्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आप 8th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, आपको और किस किस चीज का शौक है, गाने के अलावा या गिटार बजाने के अलावा और कौन कौन से शौक आप रखती हैं?
1: जी मुझे डांस का भी शौक है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आर्या, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी?
1: जी मैं बड़े होकर पहले UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे सोचूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अच्छा आर्या, आप हमारे बाल साथियों को कुछ और सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं एक भजन और सुनाना चाहूंगी।
0: चलिए सुनाइए।
1: अक्षु

0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही प्यारा भजन आपने आर्या सुनाया। अच्छा आर्या, ये बताइए आपके परिवार में क्या और कोई भी गिटार बजाता है?
1: जी नहीं, मैंने सिर्फ फोन से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला था उसके बाद से।
0: अच्छा, मतलब आप स्वयं से ही आपने शुरुआत की और आप स्वयं ही गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आर्या, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमको इतने प्यारे भजन सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: बंधु, हम सभी आगामी 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाएंगे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें युद्ध और हिंसा पूरी तरह से वर्जित है। ये पर्व शांति, संयम और न्याय की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की

0: याद दिलाता है। ये दिन मेरे मित्रों सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी को भी याद किया जाता है, जो मात्र 6 महीने के थे। मेरे मित्रों करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान इसी दिन कुर्बान की थी। करबला में शहादत पाने वाले 6 महीने के अली असगर की कहानी भी कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू ला दे। इस्लाम में वाले साथियों मुहर्रम को उत्सव की तरह ना मनाकर शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दान करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। लोग इमाम हुसैन की याद में काले कपड़े पहनते हैं और ताजिए निकालते हैं। भारत जैसे सांप्रदायिक देश में बाल मित्रों मुहर्रम को शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है।
1: और बाल साथियों अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। बाल मित्रों कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा बचपन होता है। न कोई जिम्मेदारी का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ खुद से मतलब। ऐसा मस्त समय जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आता और इन सब मस्ती के पल का साक्षी होता है हमारा विद्यालय। हमारे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बाल साथियों विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे, ये हम सभी जानते हैं। बल मित्रों नए शिक्षण सत्र का मतलब है सब कुछ नया नया। अब आप भी अपना नया बैग, नई यूनिफॉर्म मंगा कर तैयार करवा लें, अपनी किताबें और कॉपियां भी मंगाकर उन्हें अच्छे से कवर करके अपना नाम भी लिखकर तैयार कर लें। अपने जूते, टाई, बेल्ट और लंच बॉक्स भी निकाल कर रख लें, क्योंकि वो भी तो गर्मी की छुट्टियों में काफी समय से अलमारी में बंद होंगे। उन्हें भी धोकर पोंछकर तैयार कर लें। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण आपके जागने और सोने का रूटीन भी बदल गया होगा, तो अब से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें।
0: इसी चर्चा के साथ बाल साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधुर दीदी को।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 21 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:00। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम

FTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लोक संगीत में सुनवा रहे हैं विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं विकास गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए, आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, कलाकार अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

योजना ॾियण। किसाननि लाइ लॻभॻि 4 लख करोड़ खां वधीक पीएम सम्मान विधि ॾियण। 32 करोड़ खां वधीक जाइफ़ाउनि जो जन धन खातो खोलण। सेना में जाइफ़ाउनि खे स्थायी कमीशन मिलण ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिं जो शायदि मां ज़िक्र न कयो आहे। लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे। तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि, पर असां खे मिली करे इन्हनि चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे। त दोस्तो, असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे, पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं। दोस्तो, हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई उमेद सां, हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

अभी आपने कार्यक्रम सुना सिंधियत की सुरहान। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत भुवन मोहिनी धारावाहिक की तीसरी कड़ी।

0: तो नहीं? इसका पता लगाने के लिए वो भुवन मोहिनी से कहते हैं। अब सुनिए आगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की तीसरी कड़ी।
1: आइए महाराज, बहुत दिनों बाद याद आई महारानी की।
2: हाँ महारानी, राजकार में व्यस्तता हमारे मध्य अवरोध बना है।
1: मेरे अहो भाग्य, चिर प्रतीक्षा के बाद देव के दर्शन तो हुए।
2: महारानी, आज मैं एक विशेष सूचना देने आया हूँ।
1: कैसी सूचना महाराज?
2: तुम्हें ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चर्चा भारत सम्राट द्युमत सेन से चलाई थी।
1: हाँ हाँ, राजकुमार विजय श्रवा के लिए ना?
2: हाँ, और राजकुमारी के चित्र भी भेजे थे ना?
1: हाँ हाँ, याद है।
2: प्रत्युत्तर में सम्राट ने कहलवाया था कि यद्यपि राजकुमार विजय श्रवा की राजलक्ष्मी बनने के लिए भारत की अनेक राजकुमारियां प्रयत्नशील हैं, किंतु राजकुमारी चंद्रहासिनी की रूप राशि पर स्वयं सम्राट द्युमत सेन और साम्राज्ञी दोनों ही प्रसन्न हैं।
1: संतोष हुआ सुनकर।
2: और दोनों ने गुप्त रूप से चंद्रहासिनी को अपनी पुत्रवधु बना लेना स्वीकार भी कर लिया था, किंतु
1: किंतु क्या महाराज?
2: उसके पश्चात जो दूसरा पत्र सम्राट ने भेजा है अपने विशेष दूत के द्वारा, उसमें राजकुमार विजय शर्मा के एकाएक कहीं चले जाने की चर्चा है।
1: अरे,
2: रूट कर किसी अज्ञात स्थान को।
1: इस संबंध को लेकर अप्रसन्नता के कारण तो नहीं?
2: जो भी हो, परंतु अब आगे सुनो। यमुना किनारे हमारे राजोद्यान में एक महान दुतिवान युवक आकर निवास कर रहा है।
1: कब से?
2: अभी कुछ ही दिनों से। वो अपने आप को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र बताता है, परंतु मेरा अनुमान है कि ये वही राजकुमार विजय श्रवा ही हैं।
1: अच्छा,
2: इसीलिए मैंने उसे राजोद्यान में रहने की अनुमति भी दे दी है। महारानी, मैंने स्वयं उस युवक को विशेष रथ पर घूमते हुए देखा तो लगा निश्चित ही उसका रूप, उसके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं।
1: तब तो निश्चय ही वही होंगे।
2: मेरा भी यही विचार है। महामात्य ओंकार देव ने उस युवक को राजोद्यान में ठहराए जाने पर आपत्ति की थी।
1: अच्छा, क्यों भला?
2: एक बार उनके पुत्र को राजोद्यान में जाने से वंचित कर दिया था ना, संभवतः इसी की टीस होगी। अभी भी वो मेरे निर्णय को दबे छुपे स्वरों में अनुचित ही कह रहे हैं।
1: महाराज, ओंकार देव के लक्षण अच्छे नहीं हैं। वे निरंतर प्रयास करते आए हैं कि राजकुमारी चंद्रहासिनी के रूप गुण के अनुकूल कोई राजकुमार न मिले तो उन्हें उसको अपने पुत्र वधु बनाने का अवसर मिल जाए। ठीक है कि उनका इकलौता पुत्र मृत्युंजय रूप गुण चरित्र और योग्यता में राजवंशियों से कम नहीं है। छोटे मोटे राजवंश वाले उसके साथ संबंध भी कर सकते हैं, किंतु हमारी चंद्रहासिनी, जिसे सम्राट ने अपनी पुत्रवधू के लिए पसंद किया हो, उसका विवाह मैं अमात के पुत्र से कर दूं? कभी नहीं।
2: मैंने तो ये भी पता लगा लिया है कि राजकुमारी किसी भी मूल्य पर अपने भृत्य के बेटे के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने में असमर्थ है, भले ही उसे आजीवन कुंवारी रहना पड़े।
1: और क्या, कल तक राजकुमारी को देखकर अभिवादन करने के लिए खड़ा रहने वाला कोई उसका पति बनेगा तो भला चंद्रहासिनी कैसे संतुष्ट होगी महाराज? कहां सम्राट का पुत्र विजय श्रवा और कहां महामात्र का पुत्र मृत्युंजय? भगवान करे वो परदेशी युवक धारा नगरी के सम्राट का पुत्र सिद्ध हो और चंद्रहासिनी भारत की राज राजेश्वरी बने। कौन है वहां? ओ चंद्रहासिनी, चुप कर हमारी बातें सुन रही थी, भाग गई।
3: तो श्रीमान, आप हमारी ही नगरी में हैं।

पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्नसेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर भुवन मोहिनी को लेकर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो राजकुमार उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट के एक आश्रम में ठहर गया। इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन के यहाँ ही भुवन मोहिनी ने आश्रय लिया था। राजा को अपनी राजकुमारी के ब्याह की चिंता थी। जब उन्होंने जाना कि कोई अपरिचित व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठ ही कहता है आश्रम में ठहरा है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार

0: पता ही नहीं कितनी बड़ी भूल की मैंने, जो दोबारा राजू ध्यान नहीं गई। राजकुमार विजय श्रवा, आपकी तस्वीर से यूं कब तक बातें करती रहूंगी? अब तो मुझ पर कृपा करिए। जानते हैं सबसे पहले हमें आपके बारे में किसने बताया था? भुवन मोहिनी ने। हाँ, पिता महाराज के दरबार में जब भुवन मोहिनी आई तो उन्होंने उसे मुझे संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। तब से जब भी वो आपका वर्णन करती, आपसे मिलने के लिए मन बेचैन हो उठता। एक दिन मैंने उससे कह दिया, किस बेपीर पुरुष की तुम बातें करती हो सखी? भला तुम्हारा देव दुर्लभ स्वरूप जब उस पत्थर हृदय को नहीं पिघला सका, तब मैं कैसे समझूं कि वो मुझे अपनी गले का हार बनाएगा?
1: तो क्या मैं एक क्षुद्र नर्तकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से अधिक सुंदर हूँ?
0: अवश्य ही। विधिना ने अपने हाथों तुम्हारे अंग अंग को कुशल कलाकार की भांति गढ़कर बनाया है। किंतु सच कहो सखी, क्या वो तुम जैसी सुंदरी को भी प्यार नहीं करते थे?
1: राजकुमारी, कहीं भारत का भावी सम्राट एक नर्तकी की रूप वारुणी पर विस्मय विमुग्ध हो सकता है?
0: तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारे अंग सौष्ठव में जो मादकता भरा आकर्षण है, उसने अवश्य ही राजकुमार विजय श्रवा को चूर चूर कर डाला होगा। वास्तव में तुम मुझसे अपने प्रेम रहस्य को छिपा रही हो।
1: छिपा नहीं रही हूँ राजकुमारी, उन्हें भला राजकुमारियों की सौंदर्य शिखा पर अपना सर्वस्व भस्म करने के आगे मेरे रूप को देखने का अवकाश था? छी, मेरा अपवित्र दूषित और धन की लिप्सा पर बिकने वाला रूप भला राजराजेश्वर के बेटे को कैसे आकर्षित कर सकता था?
0: भुवन मोहिनी चाहे जितना कहती राजकुमार, परंतु मेरा मन स्वीकार ना करता कि वो आपके हृदय में किंचित मात्र भी स्थान न बना पाई होगी। फिर भी अब आप हमारे पास आ गए हैं तो हम तो यही मानेंगे कि आप हमारे लिए आए हैं, भुवन मोहिनी चाहे जो सोचे।
1: हे प्रभु, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। मैं तो राजकुमार विजय श्रवा के मार्ग से हट गई थी, बला थी सही, तो फिर क्यों उन्हें यहां मेरे पास आपने ला दिया? परंतु राजकुमार यहां छिपकर आए हैं, हो सकता है वो अपनी भावी पत्नी राजकुमारी चंद्रहासिनी को देखने आए हो। हे प्रभु, क्या इतना ही दुख मेरे लिए पर्याप्त नहीं था कि ये और दे दिया? मैं कैसे देख पाऊंगी अपने राजकुमार को किसी दूसरे के प्रति आसक्त?
2: राजकुमारी की जय! राजकुमारी की जय!
0: सखी भुवन मोहिनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
1: क्यों?
0: देखो, राजू ध्यान के मार्ग में प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है, जिसकी तुम भी भागीदार हो। मैं तुम्हारी हृदय से आभारी हूँ सखी, तुमने मुझे संगीत कला में निपुण कर दिया। बस आज माँ सरस्वती की कृपा से दीपक रागिनी सिद्ध हो जाए।
1: अवश्य होगा राजकुमारी, आपने कई दिवसों से एक उपासिका की भांति कठिन अभ्यास जो किया है, गंभीर साधना, आपका श्रम व्यर्थ कदापि नहीं जाएगा।
0: मैं रोमांचित हो सकी इसलिए भी क्योंकि इसी राजोद्यान में संभवतः मेरे राजकुमार भी हैं। आज उन्हें साक्षात देख पाने की प्रतीक्षित अभिलाषा भी पूर्ण होगी।
1: मेरी सखी राजकुमारी, दो दो सुखों का वर्णन करने वाली है, दीपक रागिनी सिद्ध करने का

और अपने भावी पति के दर्शन पाने का। और मैं न जाने कितनी शंकाओं कुशंकाओं से आच्छादित मन डूबा जा रहा है। क्या वो राजकुमार ही होंगे? यदि वो राजकुमार ही होंगे तो वो यहां क्यों आए हैं, मेरे लिए या मेरी सखी राजकुमारी के लिए? दोनों ही परिस्थितियों में तो मुझे घुटना ही होगा। रे मन, नियति के थपेड़ों को सहने के लिए तैयार रहे।

0: जब जब भी उद्यान में हलचल होती है मन धड़क उठता है कि कहीं वो नर्तकी न प्रकट हो जाए।
1: अरण्यक।
0: हाँ राजकुमार।
2: राज्योद्यान में आज इतनी हलचल क्यों है?
0: अब क्या बताऊं मित्र, शांति रूपी हमारी खीर में निब्बू निचोड़ने का काम पता चला है कि राजकुमारी कर रही है।
2: राजकुमारी?
0: हाँ मित्र, चंद्रहासिनी देवी यहाँ दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं।
2: दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं?
0: अब सुना तो यही है।
2: इसका तात्पर्य ये कि भुवन मोहिनी भी इसमें हो सकती है।
0: कदापि नहीं मित्र, कदापि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला यहां कैसे हो सकती हैं? अरे वो देखिए, राजकुमारी का रथ उद्यान में प्रवेश कर रहा है।
3: ओ मेरे हृदय, संयमित रह। राजकुमार विजय श्रवा पर राजकुमारी का अधिकार है, तेरा नहीं। देखना राजकुमारी कितनी व्याकुलता से पूरे परिसर में अपने राजकुमार को ढूंढ रही है।
4: ओ सखी, सखी।
5: हाँ राजकुमारी।
4: वो देखो, वो कौन है?
5: कहाँ?
4: ओ सखी, वो देखो, वो उधर लता मंडप के पास किसी के साथ खड़े हुए, वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो?
5: वो
3: मैं कैसे बताऊं सखी से कि वो मेरे स्वामी ही हैं। कितने दिनों बाद दर्शन हुए हैं तुम्हारे प्रियवर।
4: निश्चित ही ये वही है। तस्वीर से कितने गुणा अधिक मोहक है आप मेरे राजकुमार। मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। आज तक मैं जिसके चित्र की पूजा करते हुए अघाती नहीं थी, जन्म जन्मांतर से मेरी प्रेम पूजा को ग्रहण करने वाले वही वरदायक देवता, मानो मेरी दृष्टि के सामने खड़े होकर पुष्प चयन कर रहे हो।
3: अरे वो रहा स्वामी का रथ जिस पर बिठाकर उन्होंने मुझे विदा करते हुए कहा था,
6: जाओ प्रेत में प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारा राजकुमार यही रथ लेकर तुम्हें बुलाने अवश्य आएगा।
3: तो क्या वो दिन आ चुका है? क्या इसीलिए राजकुमार वही रथ लेकर आ उपस्थित हुए हैं? क्या सचमुच विजय श्रवा मुझे नहीं भुला सके, या कहीं मुझे भूलकर अपनी भावी जीवन संगनी का दर्शन करने आए हैं? ओह, इस भेद का पता कैसे चले? यदि मैं उनके दृष्टिपथ पर जा खड़ी हूं और वो अपनी महानता भूलकर अनुराग रंजित होठों से प्रियतमे बोलते हुए मेरी ओर बढ़ चले तो तब तो सिद्धि हो जाएगा, परंतु तब सम्राट के राज सिंहासन का महत्व भी खो जाएगा, दूर देश में अब कीर्ति होगी। आह, तुम यहां क्यों आ गए मेरे प्रियतम? तुम्हारा ये काम देव सा अनुपम लावण्य स्वरूप क्या छिपाने पर भी छिप सकेगा? क्या ये विशाल महान रथ स्वयं न सिद्ध कर देगा कि सम्राट के अतिरिक्त इतना मूल्यवान रथ किसी और के पास नहीं है? स्वयं

0: आदित्यसेन महाराज ने आपका चित्र देखा है, उन्हें कैसे बुलावे में डाला जा सकेगा? आज तो आपके दर्शन की प्यासी राजकुमारी स्वयं अपनी चर्म चक्षुओं से विकल होकर आपको देख रही हैं। क्या वो महारानी कुमुदवल्लभा से आपकी चर्चा नहीं करेंगी? और जैसे ही महाराज को ज्ञात होगा कि आप कोई श्रेष्ठ पुत्र नहीं, सम्राट के उत्तराधिकारी राजकुमार विजय श्रवा हैं, वैसे ही आपकी विराट राजकीय सम्मानों की श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। संपूर्ण गोपनीयता प्रकट हो जाएगी प्रिय। तब आप क्या बताएंगे किसी को कि क्यों आप गोपनीय वेश में छिपे हुए थे? राजकुमार, यदि कहीं सम्राट के पास महाराज ने संदेशा भेजा और उन्होंने मेरे निर्वासन की बात बता दी, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। आपसे यदि अभी मिलूं तो?
1: कितना सुखद है आज का दिवस। चिर दिनों की उपासना के फलस्वरूप मेरे जीवन का देवता स्वयं मेरी द्वार देहरी पर खड़ा होकर अलभ्य दर्शन का वरदान प्रदान कर चुका है। कितनी पावन है आज की पुण्यमय घड़ियां। बस बस माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आज वो मेरी गायन में दिव्यत्व भर दें, दिव्यत्व जिसे सुनकर मेरे राजकुमार आह्लादित हों, प्रसन्नचित।

0: राजकुमारी के गायन में कितनी एकाग्रता है, मानो प्राणों की अनहद रागिनी बिखेर रही है। कितना दिव्य है राजकुमारी का स्वर और कितना दिव्य है गायन करते हुए उनका ये स्वरूप। मानो समाधिस्थ हो गए हैं उनके गायन से, मानो ज्योति की लक्ष लक्ष किरणें बिखर गई हों, सहस्त्रों दीप सहसा जल उठे हों। सारे उद्यान में, नगर में, राजभवन में एक साथ ही प्रकाश की लौ जागृत हो उठी हो।
1: अद्भुत, दिव्य, मानो एक क्षण में अगणित दीप जल उठे हों। संपूर्ण परिसर झिलमिल प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है।

0: अरे, गायन समाप्त होते ही सारे दीप बुझ गए। तो क्या ये इस गायन का जादू था? निश्चित ही ऐसा चमत्कार भुवन मोहिनी ही कर सकती है। उसके अतिरिक्त और कौन ये विस्मय प्रकट कर सकता है? तो क्या रथारूढ़ होकर वही राज्योद्यान में आई है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि भारत सम्राट का एकाकी पुत्र अपना सर्वस्व समर्पण किए हुए उससे मिलने के लिए यहां आया है? प्रतीत होता है कि रथ वापस जाने को है। अवश्य ही भुवन मोहिनी रथ में पुनः सवार हो गई होगी। जो भी परिणाम हो, मैं रथारूढ़ मूर्ति को देखे बिना रथ को आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
1: सारथी, रथ रोको।
2: ओ दिव्य पुरुष, कौन है आप? अरे अरे, आप रथ के ऊपर कैसे चढ़ाए?
1: मैं जानना चाहता हूं कि इस रथ के यात्री कौन है।
2: आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राज परिवार के सदस्य हैं।
1: यही तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्दे के पीछे हैं कौन।
0: भुवन मोहिनी,
3: मेरे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? सोचा नहीं था कि ऐसे आपको देख सकूंगी।
0: भुवन मोहिनी, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें देख लिया ना, और विश्वास मानो, मिलूंगा भी। परंतु तुम्हारे समीप बैठी ये कौन है? ओह, इस मुखड़े में भी कितना घोर आकर्षण है, जो क्षण भर देखने वाले को भी बिना ठगे नहीं रह सकता।
3: ओ रूप के जादूगर, शीघ्र दृष्टि से ओझल हो जाओ और मुझे भी अपनी तरह उदंड मत बनाओ। कैसे भी क्यों ना हो, अंततः मैं एक नारी हूं, लज्जा के आवरण से ढकी हुई। मुझे निर्लज्ज बनाकर तुम क्या पाओगे प्रिय? मान जाओ स्वामी, कहीं राजकुमारी भेद की बात ना जान जाए।
4: हे प्रभु, अचानक ही तुमने मेरी रिक्त छोड़ी भर दी। ये रूप का सागर पीकर भी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रहे।
0: अब तक सारी सृष्टि का सौंदर्य एक ही चंद्रमुख में प्रतिभासित होता दिखाई देता था, किंतु आज ये कैसी आश्चर्यपूर्ण घड़ी है कि एक ही सृष्टि में दो दो चंद्रमुख अपनी आकर्षणपूर्ण किरणें डाल रहे हैं।
4: हे राजकुमार, मुझे यूं ना देखो।
2: हे दृष्टदेव, किसे खोज रहे हैं आप? यह रथ राजकुमारी चंद्रहासिनी का है। क्या अपरिचित के द्वारा मार्ग में रथ रोकना कभी क्षम्य माना जाएगा?
1: मैं विवश था सारथी, मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हुई। कृपया मेरी ओर से दोनों देवियों से क्षमा याचना कर लेना।
2: कर लूंगा।
1: मैं किसी परिचित मित्र को खोजने के बहाने अनजाने में अपराध कर बैठा। क्या अपरिचित के प्रति दया का व्यवहार नहीं किया जाएगा?
4: सारथी, अपरिचित से कह दो कि यूं तो अवश्य ही उक्त व्यवहार महिलाओं की दृष्टि में पर्याप्त अभद्र है, किंतु भूल भूल ही होती है। हम दोनों भी उसे भूल ही मान रहे हैं, इसलिए क्षमा याचना का कोई प्रश्न ही नहीं। इनसे बोल दो कि इस राजोद्यान में आकर ठहरने वाला कोई भी अपरिचित व्यक्ति हम दोनों के लिए स्वजन की तुल्य ही है, क्योंकि यहाँ अनुमति केवल उन्हें ही दी जाती है

0: पहले ही राजकीय आदेश प्राप्त रहते हैं।
1: चलिए आपको क्षमा किया जाता है, मैंने ठीक कहा ना राजकुमारी?
0: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
2: आपने सचमुच ठीक कहा राजकुमारी।
0: सचमुच। सारथी रथ बढ़ाओ।
1: जो आ गया राजकुमारी।

संग्रहालय से एक क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना भुवन मोहिनी धारावाहिक का तीसरा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ. केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ. हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान शिवपुरी केंद्र का है।

पारशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है, और साथियों आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत

0: आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध ना हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं, दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए, वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत करके हम न केवल धन और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करे और संरक्षण के उपाय अपनाए। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, एक सार्थक और दूरदर्शी विचार है जो हमें उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय योग का जीवन में महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर।
1: योग विज्ञान का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल योग कहलाता है। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु के धज प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ रहा है। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण और आदर्श समाज की रचना करना है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन की संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं मन के साथ ही चेतना भी शुद्ध और सबल होती है। योग अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का आधार मेरुदंड और मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है, ये योग द्वारा ही संभव है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के चरम व परम लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर सकता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है, यह जीवन जीने का एक प्रभावी व्यावहारिक विज्ञान है। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास।

विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण। योग जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवन जीने की कला अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य में निहित सृजनात्मक शक्तियों का जागरण एवं रूपांतरण ही योग है। मन को शांत एवं नियंत्रित करने की कुशल विद्या एवं दिव्यता को प्राप्त करना ही योग कहलाता है। परम सत्य को जानना एवं परम सत्य में रमण करना ही योग है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही योग है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के शब्दों में योग उस साधन प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। योग का लक्ष्य एक ही है, नर से नारायण बनाना। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह जितना भी एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सभी वैज्ञानिक खोजों का रहस्य है जो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। जीवन में योग की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में योग उच्च जीवन प्राप्त करने की विद्या है जो व्यवहारिक जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। सर्वोच्च स्तर पर जाकर यही मोक्ष का कारण बनती है। इसका आरंभ मन के नियंत्रण से होता है। जीवन में सभी स्थूल कर्म शरीर से ही होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मन है। जैसे मन में विचार होते हैं वैसे ही कर्म शरीर द्वारा होते हैं, इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों के लिए मन ही जिम्मेदार है। इसलिए योग साधना का आरंभ मन के नियंत्रण से ही किया जाता है। योग के कई मार्ग हैं, जिनमें राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाद योग, तंत्र योग आदि। इनमें से किसी की भी साधना की जाए, सभी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनके लिए विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा कई योगी इनकी साधना भी करवाते हैं। ज्ञान साधना के लिए योग वशिष्ठ पूर्ण योग ग्रंथ है तथा शंकराचार्य इसके पूर्ण उपासक थे। व्यावहारिक जीवन में गीता का योग सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार किसी की भी उपासना कर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। शरीर में आत्मा एक कारण तत्व है जो सभी क्रियाओं का कारण है, किंतु इसकी सभी क्रियाएं मन से ही होती हैं। इसलिए ये मन ही करता है। संसार की अनुभूति भी मन को होती है। सुख दुख का अनुभव, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी दुर्गुण हैं सभी मन की ही उपज है। इसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, सेवा आदि जितने भी भाव हैं, वे भी सभी मन की ही उपज है। अतः मन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, वरना समाज व्यवस्था रह ही नहीं सकती। ये मन ही संसार है। संसार के सभी बंधन मन के ही कारण हैं तथा मन से ही मुक्त होना मुक्ति है। आत्मा को जानने वाला भी मन ही है जो आत्मा से भिन्न ही है। आत्मा ज्ञेय है तथा मन ही उसका ज्ञाता है। जिसे ज्ञान होता है, यदि मन ना रहे तो इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। अनुभूति के बाद भी उसकी व्याख्या मन के द्वारा ही की जा सकती है। अतः मन की ही सर्वाधिक भूमिका है। यदि मन आत्मा में विलीन हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? जो मन सांसारिक विषयों से ही भरा है वह उस चैतन्य को जान ही नहीं सकता। मन को सबसे पहले सांसारिक विषयों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। मन को इन विषयों से खाली करना प्रथम चरण है। योग द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर विकास। एक ही समय में इन सभी स्तरों पर उन्नति केवल योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव है। शारीरिक विकास योगिक क्रियाएं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि जो जीवन के एक एक अंग पर क्रिया कर उन्हें उन्नत करती है। मानसिक विकास मन को एकाग्र कर सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिससे आत्मविकास, साहस, धैर्य, उत्साह, संयम आदि गुण विकसित होते हैं। ध्यान व प्राणायाम की क्रियाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक हैं। भावनात्मक दृष्टि से भी भक्ति योग भावनाओं को परिपक्व बनाने में सबसे सशक्त माध्यम है। बौद्धिक विकास के लिए मन की एकाग्रता अपरिहार्य है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स
शिथिल होकर स्वतः ही उन्नत हो जाते हैं।

0: अतः बुद्धि तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। सामाजिक विकास भी योग के माध्यम से होता है। मन की शांत व एकाग्र अवस्था व स्वतः ही समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण आध्यात्मिक विकास की नींव है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन को शांत व शून्यता के प्रति अग्रसर करता है। आध्यात्मिक विकास जीवन की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को रोगों के होने का कारण माना जाता है और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना अर्थात जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक के उपचार कर रोगों को ठीक किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ त्रिदोष और सप्तधातु का असंतुलित होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है। औषधियों के द्वारा वात पित्त कफ को संतुलित कर रोग निवृत्ति की जाती है, परंतु योग चिकित्सा के अनुसार विजातीय द्रव्य का शरीर में रुक जाना अर्थात किसी भी अंग को प्रभावित करना रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य के वातावरण में जीवाणु के उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यही रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग में विजातीय द्रव्य द्वारा बना वह वातावरण है जिससे हानिकारक जीवाणु पनपते हैं और लक्षणों के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रोगों का कारण जीवाणु नहीं बल्कि वह दूषित पदार्थ है जो शरीर में रुक जाते हैं। योग चिकित्सा द्वारा शरीर के इन विजातीय द्रव्यों टॉक्सिन को शरीर से दूर कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु पनपने का वातावरण ही समाप्त ही कर दिया जाता है, जिससे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है। योग चिकित्सा द्वारा रोग शरीर के हर स्तर पर शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक स्तर से दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है तथा सभी स्तरों की पूर्ण क्षमता को उभार कर संतुलित विकास के लिए अग्रसर किया जाता है। स्वास्थ्य ही शरीर की धरोहर है। ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है ये बड़े पुण्य और अपने अच्छे कर्मों का वरदान है कि आप अपने आनंद में जीवन को तनाव व रोग युक्त न बनाएं। इसलिए ले प्रतिज्ञा हम करेंगे योग रहेंगे निरोग रहेंगे निरोग।
1: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे रघुवीर पाराशर। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है परचर्चा करने का। साथियों मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाती है। विद्यालय शिक्षा के बाद महाविद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य और करियर की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है बल्कि यह वह मंच है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। दोस्तों महाविद्यालय शिक्षा का वह स्तर है जहां विद्यार्थी अपने रुचि और लक्ष्य के अनुसार विषयों का चयन करते हैं। यहां उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सामान्य शिक्षा दी जाती है जबकि महाविद्यालय में उन्हें विशेष विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यही अध्ययन आगे चलकर उनके कैरियर की नींव बनाता है। साथियों महाविद्यालय विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं संगोष्ठियों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नेतृत्व समय प्रबंधन टीम वर्क संचार कौशल और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कई महाविद्यालय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता

तब मिलती है। साथियों, महाविद्यालय केवल शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं होता, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र है। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। साथियों, महाविद्यालय जीवन का सही उपयोग करना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। उन्हें समय का सदुपयोग करते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई नई जानकारियां प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विद्यार्थियों को महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने करियर को सफल बना सकते हैं। महाविद्यालय विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह उन्हें करियर की मजबूत नींव तैयार कर देता है और भविष्य की

उजाला उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे कार्यक्रम पिटारा में। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। त्रिवेणी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे।

पिटारा में आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा। डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह शाम को 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम खिलौना। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल नाटिका, वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार दाग, निर्देशन सत्येंद्र शरत। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पत्रकार का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। ये थी झरोका के अंतर्गत कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी रामप्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु।

0: फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें रामप्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है
1: जी, जी।
0: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के बहुत सुंदर
1: जी।
0: मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वायलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी
0: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब,
1: हाँ,
0: जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी।
0: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें
1: मैं ये सोच के उसके दर से
0: एग्जैक्टली वही गीत है।

0: हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और इसी की बात हो रही थी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस ज़माने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले

0: वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ। उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज टाकीज जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में। मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूज़िक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
1: जी।
0: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ। तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना। इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाह साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
1: जी।
0: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी हो के रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा मैं चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का। ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
1: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
0: जी। अवश्य।

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई। लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा. फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार. साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता. देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है. देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है. अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं. न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े. हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं. ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं. आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे.

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

0: इस क्रिकेट मैच का आगे का खौती का हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर?
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजमी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक

0: दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा,
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को PhD सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, मां सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है।
0: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामरी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि युद्ध पोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेस

0: फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में सम्पन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एफआईएच महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल छाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कानवर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: अनुमान के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण।

0: पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
1: जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
0: आरंभ है प्रचंड।

ये सोच लो, यहाँ की पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड,

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज

0: गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है, किसी भी हार से तुरंत बौखला कर वार ना करना बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है।

मेजर रणबीर सिंह जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे, वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक और जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करे। बिना देर करते हुए एक योजनाबद्ध हमला करने का फैसला किया गया, जहां दुश्मन को दोनों ओर से घेरने की योजना बनाते हुए टैंक टुकड़ी को पीछे से और बाकी आगे से हमला करने निकल चले। इससे शत्रु के आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद होता ही था, साथ ही वो पीछे हटने लायक भी नहीं रह पाता। शत्रु की कल्पना से परे एक ऐसा रास्ता निकालना जो उसके होश उड़ा दे, एक बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरणों की भरमार है हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा।

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे

0: थी। तभी उनकी नज़र शत्रुओं की एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।
1: है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है।

0: सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से।
1: सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ किशोर कुमार की, गीत के बोल गुलशन बावरा के और संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल जारी रहेगा 8:35 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं समाचार।

0: सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष व्यापार में सुगमता।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
3: Thank you.
2: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
3: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो FDI आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक FDI को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 trillion से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव FDI अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 trillion से ज्यादा का FDI का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है। और अभी लास्ट ईयर ही हमारा FDI $95 billion था, तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक FDI डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द

0: था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया।
1: सुनील जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं। तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है। अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव-गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
0: बिल्कुल।
1: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लैबोरेटरीज के,
0: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
1: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے انڈیا کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اس کے خاص بات کے ریفارمس تھے اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے پرسینٹیج آف جی ڈی پی اس میں لگایا تھا وہ اوروں دیشوں سے بہت ہی کم تھا, لیکن پھر بھی اناج 80 کروڑ لوگوں کو ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ, مائگرینٹ ورکرس

0: के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे,
1: जी
0: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड
2: इंसेंटिव, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे

0: से चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज. इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो. अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है. जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी, 2.6% रहेगी. तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा. अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ नई बिजनेस गो हैंड इन हैंड. ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं. हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है. जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 trillion का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 trillion होगा, सर्विसेज 1 trillion होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 trillion. तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है. तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है. और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी. अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 crore का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा. नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम.
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is logistics data bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo. Or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunilji, you've talked of three different things and I'll answer each one separately. So first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. We import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now, the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
2: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business. And particularly the first is you have computerize the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes where you don't have to be physically present and you can do this online. And interestingly, and this is very interesting for your listeners to actually understand, if you don't clear your goods or you don't pay on time, there's a penalty on you. So you're actually putting the onus on the businessman to help in this going forward. So, that is the customs thing. And there's been a lot of streamlining of the customs thing and more is in store going forward. There were multiple chapter heads. There were multiple things here. There's a rationalizing going in. And a lot of what has been done in income tax space will be done in the customs space. The second thing was logistics. You know, if you took the textile industry for one, and it's a 4 or 5 season kind of a thing, and you had to ship between India and let's say your main market, if it was the US, within certain number of days. Now, if more than 50% of those days were taken up in

श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब निरंतर करेंगे 9:30 से। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त।

0: करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघे

0: गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर व रसूख का फैसला कुन अंसर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तहान का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से 2 सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 हजारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमे डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराए और DigiLocker से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और तीन रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर

0: रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मनद हुई। वजीर अजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर अजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
0: इस साल के योग के बैन अवी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बावानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में 3 अहम तरजीहात, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन 0 दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा

0: में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दामबोला में 3 मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारतीय ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौड़ते मुश्तरक खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाथ लाबेम शहर में मुनक़िदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22-7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालय खत्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
2: जानी मानी अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर। हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर।
0: ये थे थॉमस बीच ऑल्टर, जिनका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दरअसल टॉम ऑल्टर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के बेटे थे। बचपन का उनका समय हिमालयन हिल स्टेशन लैंडोर में बीता था। वैसे आपको बता दें, टॉम ऑल्टर ने हाल ही में एक लेख में बताया था कि उनके जो परदादा थे वो ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स से सन 1916 के ज़माने में भारत में आए थे और उसके बाद भारत में उनका परिवार अलग अलग जगहों पर रहा। टॉम ऑल्टर के पिता इलाहाबाद के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इसके बाद वो सहारनपुर की एक सेमिनरी में पढ़ाने लगे थे। बाद में उनके माता पिता ने राजपुर में एक आश्रम शुरू किया था जिसका नाम था मसीही ध्यान केंद्र। फिर जबलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर राजपुर में रहने के बाद देहरादून और फिर वो मसूरी में जाकर बस गए।
2: मैं जल्दी से एक बात बताता हूँ, अमर प्रेम दिल्ली में लगी थी, हम मसूरी में थे उस टाइम। तो मसूरी में फिल्में बहुत बाद में लगती हैं, पहले देहरादून आती है, फिर धीरे धीरे मसूरी आ जाती हैं। तो हम लोग रात की बस पकड़ के मसूरी से रात का सफ़र करके दिल्ली गए थे ये फिल्म देखने के लिए, अमर प्रेम, मुझको याद है। 3 बजे का शो देखकर फिर थोड़ा सा खाना वाना खा के वापस आकर हमने ये 6 बजे के शो देखा, फिर रात वाली बस से हम वापस आए मसूरी। तो ये अमर प्रेम से इतना हमारा अमर प्रेम था उस टाइम। तो इस फिल्म के भी गाने मतलब एक के बाद एक सब सुपर हिट थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक जो गाना है जो जिसका इस फिल्मी दुनिया से एक ख़ास ताल्लुक है वो मैं पेश करना चाहूँगा। उस गाने का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 20 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर जगाधरी में रहे। इसके बाद वो उसी स्कूल में चले गए जहां उनकी खुद पढ़ाई लिखाई हुई थी, यानी मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल। यहां भी उन्होंने थोड़े दिन पढ़ाया। जब वो जगाधरी में रह रहे थे तब हिंदी फिल्मों से उनका ज्यादा लगाव हुआ। इसी दौरान उन्होंने आराधना फिल्म देखी।

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूना से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफ़र तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मज़ेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी।

0: राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
1: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
2: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
2: हम फौजियों की उनकी कदर करते हैं।
1: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
2: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
1: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
2: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
1: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
2: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
1: After which the company will assume the administration of Oud.
2: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
1: I hope the king has understood what I've said.
2: हमने जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? May please tell His Majesty that I have no use for that.
2: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
3: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
0: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई, मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में, तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी, तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले, तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
0: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस ज़माने में उर्दू या हिंदुस्तानी ज़बानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहें तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
0: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था, वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो, तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है, और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई। एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसको ज्यादा उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पर मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूँ, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूँ, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूँ थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साये के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया,

0: कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपने अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं। लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफ़र केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफ़र से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
1: खेलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
0: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में, मतलब शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यूँ कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट, और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के। मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है ये हमको बहुत कुछ सिखा सकता है ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी का संघर्ष जो है, किस तरह लड़ना चाहिए, वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
1: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
0: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है, वो भी ऑडियंस के सामने। तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का, तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है। वो सफ़र आपको थिएटर, इसमें सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बॉम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ। उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
1: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
0: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल, ना तो इंग्लिश क्लासिकल। लेकिन हाँ, पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत

मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूज़िक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूज़िक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूज़िक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठकर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूज़िक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरी इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूज़िक में या तो पॉपुलर म्यूज़िक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूँ तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं, मुश्किल है। मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊँ मैं, कुछ उनकी आवाज़ को पहचानने में मुझको तकलीफ़, शायद इसलिए कि मैं पुराने ज़माने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मज़ा आता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: छाया गीत में आज थे कुछ कम चर्चित संगीतकारों के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल।
0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह। फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय

0: में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted today amid tight